0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब किसी पशु के गले में कोई रस्सी बांध दी जाती है तो वह पशु उस खूंटे के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है। वह चाहकर भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। वह सोचता है कि यही दायरा उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन इंसान की हालत तो उस पशु से भी ज़्यादा अजीब है। इंसान के गले में किसी ने बाहर से कोई रस्सी नहीं बांधी है, उसने खुद ही मोह, वासना और अज्ञान की एक अदृश्य रस्सी अपने गले में डाल रखी है और उसी के चक्रव्यूह में जिंदगी भर चक्कर काट रहा है। कबीर साहब आज हमें इसी अदृश्य रस्सी को काटने का हौसला दे रहे हैं। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जिस शरीर के अहंकार में आकर तुम इस रस्सी से बंधे हुए हो, वह शरीर एक दिन मिट्टी में ऐसे मिल जाएगा कि उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी दार्शनिक सूत्र। जिहि जेवड़ी जग बांधिया, तू जिनी बंधे कबीर। जिहि जेवड़ी जग बांधिया, तू जिनी बंधे कबीर। भाई सी आटा लून जू, सोना सवा शरीर।

0: यह दोहा संसार के मोहपाश और काया के अभिमान पर की गई एक परम तार्किक चोट है। यहाँ जेवड़ी अर्थात रस्सी, वाह सी आटा लून जू, आटे में नमक की तरह विलीन हो जाती है, और सोना सवा शरीर, सोना जैसा दमकता हुआ यह सुंदर शरीर का प्रयोग करके कबीर साहब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यानी काल के अनिवार्य नियम को समझा रहे हैं। श्रोताओं, कबीर साहब खुद को हम सबको संबोधित करते हुए, जिहि ज्योड़ी जग बांधिया, जिस ज्योड़ी यानी मोह माया और आसक्ति की अदृश्य रस्सी से यह पूरा संसार बंधा हुआ है और बंधकर हम उसमें छटपटा रहे हैं, तू जिन्हें बंधे कबीर, हे कबीर तू उस रस्सी से मत बंधना, तो इस मोह के जाल में खुद को दूर ही रखना। कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे शरीर की नश्वरता का अचूक सच सामने रखते हैं। भाई सी आटा लून जू, जैसे थोड़े से आटे में यदि मुट्ठी भर नमक मिला दिया जाए तो वह नमक आटे में पूरी तरह विलीन हो जाता है, उसे ढूंढने से भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही यह शरीर एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। सोना सवा शरीर, तुम्हारा यह जो सोना सवा यानी सोने जैसा दमकता हुआ कंचन जैसा सुंदर शरीर है, जिसके सौंदर्य और बल के अहंकार पर तुम डूबे हुए हो, वह एक दिन इसी मिट्टी के आटे में नमक की तरह मिलकर गायब हो जाएगा। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा असंगता और कालचक्र का एक अनूठा विश्लेषण है। वेदांत दर्शन में संसार को महामोह कहा गया है, जो जीवन को उसके आत्मस्वरूप से भटकाए रखता है। आटा लून जू का प्रतीक बहुत गहरा है। यह दर्शाता है कि जैसे नमक अपना अस्तित्व खोकर आटे का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही यह भौतिक तत्व पंच तत्वों में विलीन होकर अपनी पहचान खो देता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब इन सोने जैसी काया की नियति ही राख बन जाना है, तो फिर इस काया के सुखों के लिए अपनी चेतना को मोह की रस्सी में क्यों बांधना? बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस रस्सी को विवेक की तलवार से काट दे और जीते जी उस अमर तत्व से जुड़ जाए जो कभी नष्ट नहीं होता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी ज्योड़ी यानी अपनी रस्सियों को पहचानिए। हमने खुद को किन किन मोह और इच्छाओं की रस्सियों में बांध रखा है? इस सुंदर शरीर को सजाने में, इसे अमर समझने की भूल में हम अपनी कितनी आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं? याद रखिए, समय का एक ही थपेड़ा इस सोने जैसी काया को मिट्टी कर देगा। आज कोशिश कीजिए इस अदृश्य रस्सी को की पकड़ को ढीला करने की। संसार में रहिए, शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन इसकी मोह के कैदी मत बनिए। अपने भीतर छिपे उस राम तत्व को खोजिए जो कभी काल के वश में नहीं आता। होश में आइए, सजग बनिए और अपनी चेतना को इस बंधन से मुक्त कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM। ऑलवेज
2: ओ मॅन ऑन द सर्फेस ऑफ दिस प्लॅनेट अलॉंग विथ मिलियन्स ऑफ क्रिएचर यू केम टू ब्रिंग अगेन अँड अगेन समवन युनिक फादर ऑफ द एंटायर युनिवर्स it is the theory that is crass, fanciful, ritualistic, and imagination, including nonsense. In the whole universe, a frog was born and spread the breeds of frog. In the whole universe, a mosquito was born and spread the breed of mosquitoes all over the world. It would be wrong to claim that is theoretical. To investigate the evolutionary origin of hundreds of millions of such animals in a hypothetical way. On the entire surface of the earth, due to amalgamated union of natural elements, countless creatures were born, some similar, some dissimilar. Birds and animals were born, and like that is man. On the planet, with varying DNAs in various regions, as per the reason, natural laws, your appearance and colors appear different. Right, as per reason, black, white, short nose, flat nose, carnal size, tall or short, stout or lean, but after all, man, you are. Your behavioral pattern and utterance were expressed, and they're epitomized in varied dialects. Your primitive world tone, therefore born, thousands of dialects of them, some stabilized as standard language, out of thousands of dialects, tones of millions of masses went on indicating titles of elements, places. Of beast and bird, you uttered name of various animal, of places, of crop, those name as per that language customized. Then you became interactive medium for the generative nature, medium for acquaintance and for identification addresses around. In all these languages are not given to you by some invisible powers. You are the generator of the title, given and customized to different element in the nature. With your infinite power, you connected the whole world and transportation began. The content of life's affair and thoughts began to impart it. The visit of man to man by crossing the reason for economic stability, the reasons of man changed, the state changed, the countries also changed. In addition to this, took place interactions of thoughts, sanskar, culture, mutually accompanying, some fictitious, some real, and some of practical experience. O man, your rationalism is infinite, your imaginative wisdom is infinite, your manners of experiencing material pleasure are also infinite. For the absolute pleasure of the material life, you invented innumerably for your material pleasure by crossing obstacle and soon

कल्याण मार्ग सेवू नी पावे उत्तम तो गति। जो शास्त्र मार्ग सोडू नी करितो स्वैर वर्तन, न सिद्धि लाभते त्यास न वा सुख न सद्गति। मनुनी आदरी शास्त्र कार्या कार्य कळावया, शास्त्राचे वाक्य जानूनी इथे तू कर्म आचरी।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

मैंने पूछा नदी से, तुम्हारा मजहब? नदी कुछ भी नहीं बोली, बहती रही चुपचाप। कुछ पत्थर आए थे नदी की राह में, नदी अगल बगल से सरक कर आगे निकल गई। कुछ देर बाद पूछा मैंने, तुम्हारी भाषा नदी? नदी तब भी कुछ नहीं बोली, बस बहती ही रही। मैंने पहला प्रश्न सन 47 में किया था, दूसरा 71 के आसपास। पहली बार मेरे दो टुकड़े हुए थे, दूसरी बार मेरे टुकड़े के दो टुकड़े। किसी भी देश का विभाजन इसी तरह उसकी माटी से टीस बनकर उभरता रहता है। 200 साल पराधीन रहने के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी प्रसन्नता, कितने गौरव का विषय होगी, ये सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात कुछ अलग ही अनुभूतियों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़े में बांटकर आजादी की वो तस्वीर बनाई। जाहिर तौर पर भारत विभाजन की ये फांस भारतीयों के मन में धंस गई। जिस अधिनियम के तहत भारत आजाद हुआ उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक अधिनियम जिसके प्रावधानों के दूरगामी परिणाम हुए। इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। वो भारत जो सदियों से अपनी भौगोलिक और आत्मिक अखंडता का परिचायक था, इस अधिनियम ने उसकी जमीन पर बंटवारे की लकीर खींची। बरसों के संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी की भोर जाग रही थी। अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों के संकल्प से परिचित करा दिया था। स्वाधीनता संग्राम का उत्तरार्ध आते आते अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो निर्णायक साबित हुईं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का झोंका जाना, आजाद हिंद फौज का पराक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती लोकप्रियता, सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह और रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा किया गया नौसेना विद्रोह, ये वो तात्कालिक घटनाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की याद दिला दी थी। इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और इसी लाचारी में उन्होंने भारत की आजादी तय की, लेकिन इसके साथ ही भारत विभाजन का षड्यंत्र भी रचा। 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया। लेकिन भारत अब आजाद था। इस अधिनियम ने भारत के एक नवीन युग की शुरुआत की। इसके बाद ही स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास आरंभ हुआ।

वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था। इसके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। 3 जून 1947 वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बनाए जाने की घोषणा की गई। माउंटबेटन के इस फैसले ने लाखों लोगों को अपने देश में ही शरणार्थी बना दिया। इस घोषणा के बाद करीब 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। दंगों में लाखों लोगों की मौत हुई और आजादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को देश दो भागों में बंट गया। इसकी पृष्ठभूमि में था वो डिकी बर्ड प्लान, जिसे मई 1947 में माउंटबेटन लेकर आए थे। इसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना गया। इस प्लान के तहत माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि देश के सभी प्रांतों को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, फिर उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया जाए कि वो संविधान सभा का हिस्सा बने या न बने। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर दो देश बनाया जाए और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस योजना पर अंतिम मुहर लगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ और इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। ये वो समय था जब अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी के इस देश में चारों ओर अशांति थी, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे और उधर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक संघर्ष और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं थीं। इन परिस्थितियों में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान ऐतिहासिक थे, जिनके प्रभाव को आने वाले समय ने सहा। इस अधिनियम ने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं ये दायित्व संभाला। दोनों देशों को ये शक्ति दी गई कि वे अपने देश का संविधान बना सकें तथा किसी भी देश के संविधान को अपना सकें। संविधान सभाओं को ये शक्ति भी दी गई कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त करने का प्रावधान दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटेन की शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। ऐसे अनेक प्रावधानों के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी कि बंटवारे में कौन सा क्षेत्र किस देश के पास रहेगा। अधिनियम में प्रावधान दिया गया कि बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाए तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। इस बंटवारे में भारत के हिस्से आया मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग प्रदेश, और पाकिस्तान के हिस्से में आया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम का मुस्लिम क्षेत्र। इसके साथ ही रियासतों को ये छूट दी गई कि या तो वो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या यथास्थिति में रहें। इस प्रावधान में छिपी थी गहरी उथल पुथल और छुपा था चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य।

विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित और दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव स्पष्ट था। साथ ही ये योजना भी नहीं बनाई गई थी कि विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। कुल मिलाकर जाते जाते भी अंग्रेज समस्याओं का एक वटवृक्ष बो गए, जिससे उबरना अत्यंत कठिन था। दोनों देशों की सीमा निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जिस सीमा आयोग का गठन किया गया, उसकी घोषणा में भी अनावश्यक देरी की गई। माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये सोच थी कि इससे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। जब भारत आजाद हुआ, तब देश में 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। रियासतों में बंटे इस भारत का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृहमंत्री थे। सरदार पटेल ने रियासतों के विलीनीकरण के लिए दूरदर्शिता, सामंजस्य, जनता का दबाव तथा धमकी, इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया। भारत के हिस्से आए रजवाड़ों ने एक एक कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, या कहें कि सरदार पटेल और वीपी मेनन ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, तो उधर कश्मीर स्वतंत्र रहने की। लेकिन सरदार पटेल की संकल्प शक्ति और सूझबूझ से ये चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। बहुत कम समय में भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश का एकीकरण सरदार पटेल की अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अपने इस योगदान के लिए वो भारत के बिस्मार्क कहलाए। भारत से जाते हुए भी अंग्रेजों ने समस्या खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर की समस्या से भारत लगातार जूझता रहा, लेकिन ये वो भारत है जिसमें अपने सभी प्रांतों के लिए एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के ध्येय को पूरा करने का सामर्थ्य है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम कानून था, एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिसमें भारत की आजादी का ऐलान था, लेकिन देश के विभाजन के साथ। अंग्रेजों की फूट डालने की एक ऐसी चाल जिसका खामियाजा पीढ़ियों ने भरा, लेकिन बावजूद इसके भारत की सनातनता और इसका अखंड स्वरूप सदैव स्थापित रहेगा, और निश्चित ही हमारी इस अखंडता के सम्मुख विश्व समुदाय नतमस्तक होता रहेगा। जय भारत, जय हिंद।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गुलजारी लाल नंदा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है सियालकोट। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से शरद गुरमीत, जलगांव महाराष्ट्र से आदर्श कुमार खले, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा और जबलपुर मध्य प्रदेश से दीप्ति सिंह। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको मेल द्वारा भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: बचपन में विनोबा खूब बीमार रहते थे। माँ हमेशा कहती थी कि हमारा विनया 6 महीने निकाले तो बहुत, कुछ न कुछ बीमारी होती ही रहती थी, इसीलिए डॉक्टरी दवा भी कुछ न कुछ चला करती थी। विनया को ये दवा पिलाते समय माँ रोज उससे ये श्लोक बुलवाती, औषध जानवी तोय वैद्यो नारायणो हरि। विनु उस प्रकार बोलता जाता। एक दिन इसका अर्थ उसके ध्यान में आया तो माँ से कहने लगा,
1: अरे माँ, इसमें तो भगवान को वैद्य और गंगाजल को औषध समझने के लिए कहा है।
2: तेरा वह अर्थ तो सही है, परंतु उसके लिए वैसी योग्यता चाहिए। तेरे लिए उसका अर्थ अलग है।
1: वो कौन सा है?
2: डॉक्टर को भगवान समझ और वह जो कुछ औषध दे उसे गंगाजल समझ।
1: परंतु माँ, ये 2 भूमिकाएं हैं, दोनों भूमिकाओं में, दोनों बातों में तथ्य है। माँ, तूने ये कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं, ये सौभाग्य का चिन्ह है या दुर्भाग्य का? तेरा सौभाग्य तो तेरे हाथ में नहीं, उस कांच के कारखाने के हाथ में है। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य?
2: अरे बेटा, कांच की चूड़िया पहनने के पीछे भी एक दृष्टि है। कांच की चूड़िया पहनी तो सावधानी से ख्याल रखते हुए काम करना होता है, फिर धड़ाम धम काम नहीं कर सकते। जैसे जनेयू पहनने से रोज स्नान किया है या नहीं इसका पता चलता है। जनेयू गंदा हो तो स्नान भी नाम का, वैसे ही यह बात है। कांच की चूड़िया पहनने से काम में सावधानी और कुशलता आती है।

0: घुमक्कड़ तो विनोबा बचपन से ही था, दिन भर भटकता रहता। रात में घूम घाम कर घर आता तो अंधेरा हो जाता। घर के सभी लोग खा पी कर निश्चिंत हो जाते थे, सिर्फ माँ बेटे की राह देखती बैठती थी। वो वीना को खिलाकर तब खुद खाती। ये रोज का कार्यक्रम बन गया था। एक दिन विनोबा को आने में बहुत देर हो गई, देखा तो माँ बिना खाए बैठी है, उससे रहा नहीं गया।
1: माँ मुझे बहुत देर हो जाती है, तू पहले खा क्यों नहीं लेती?
2: तू उस बात को नहीं समझ पाएगा बेटा, जब तू माँ बनेगा तब इस बात को समझ सकेगा।

0: भविष्य ने विनोबा को भी माँ बनाया, नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ नहीं, 30 साल की डबल ग्रेजुएट एक नौजवान लड़की की माँ। और तब कभी न देखी कभी न सुनी विनोबा लीला देखने को मिली। बहुत बार सवाल उठता कि क्या ये वही बाबा है, फिर याद आ जाता कि ये तो माँ बना हुआ बाबा है। सारी मातृलीला उसने बचपन से ही अपने माँ से सीखी है। विनोबा की माँ का मायका था कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे। 4 साल की उम्र में पहली बार माँ विनया को नाना के घर ले गई। इतनी छोटी उम्र में भी माँ विनया को नदी पर स्नान के लिए ले जाती थी। कड़ी ठंड के दिन हो तो भी माँ बेटे को साथ ले जाने का आग्रह रखती थी। पाँव में जूते भी नहीं रहते थे। जब ठंडी असह्य हो जाती तब विनू को स्नान से मुक्ति मिल जाती थी। परंतु माँ का स्नान तो अटल था, परंतु बच्चे के मन का समाधान कराने के लिए वे कहती,
1: खूब ठंडी है, नहाने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा आचमन कर ले। कहावत है, गंगा स्नानम तुंगा पानम। जो फल गंगा स्नान से मिलता है वही फल तुंगा के पान से मिलता है।
0: बचपन से तपस्या, त्याग और भक्ति का भोजन बच्चों को मिला और उसमें से पोषण पाकर सन्यासी, भक्त और सेवक का एक अनोखा व्यक्तिमत्व जगत को मिला। जीवन के अनमोल पाठ पढ़ाने वाली माँ को याद कर वे कहते हैं,
2: जन्मदात्री मेरी माँ ने मुझे बचपन से त्याग और तपस्या सिखाई, बांट कर खाना सिखाया। वैसी ही मेरी दूसरी माता वेद माता ने मंत्र दिया। दोनों माताओं के मुझ पर अनंत उपकार।
0: विनोबा को बचपन से ही धर्म ग्रंथ पढ़ने का शौक था, कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। एक दिन भक्त विजय पढ़ते पढ़ते उन्होंने माँ से कहा,
2: माँ ऐसे संत तो केवल प्राचीन काल में ही हो सकते थे।
1: बेटा संत तो आज भी है, बस हम उनको जानते नहीं है। यदि संत सज्जन ना होते तो फिर यह पृथ्वी टिकती किसके तप के आधार पर।
0: कितना गहरा विश्वास, खास पढ़ी लिखी न होने पर भी अपनी अंतर विद्या से माँ बच्ची को अमूल्य ज्ञान परोसा करती थी। यो भी माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, परंतु इस मामले में तो परस्पर आदान प्रदान चलता था। माँ को किसी विषय में समाधान न होता तो वो तुरंत विनया से पूछकर समाधान पा लेती थी। माँ को इतना भी पढ़ना नहीं आता था, कभी कभी विनया उसे पढ़ना भी सिखाता था। एक दिन सुबह विनोबा जी ऊपर के कमरे में वर्ड्सवर्थ की एक कविता ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। माँ ने सुना तो बोली,
1: विनया ये क्या सुबह सुबह यस फस।
2: माँ ये अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की अप्रतिम कविता है और मैं एक अच्छी किताब ही पढ़ रहा था।
0: जब विनोबा ने माँ को कविता का अर्थ समझाया और ये विश्वास दिलाया कि वे एक अच्छी किताब ही पढ़ रहे थे, तब वो बोली,
1: तो गलत किताब पढ़ेगा नहीं, यह मुझे पता है। और अंग्रेजी में भी अच्छे विचारों वाली किताबें होगी। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं, परंतु तड़के संस्कृत पढ़ना चाहिए।
0: संस्कृत सीखने की प्रेरणा विनोबा जी को माँ से मिली। विनोबा जी को हाई स्कूल में प्रवेश लेना था। घर पर चर्चा हुई कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा ली जाए, फ्रेंच ली जाए, ऐसा पिता का कहना था और उनकी बात को विनोबा ने मान भी लिया। मगर माँ की रुचि उसमें नहीं थी, उसने बेटे और पिता की बातें सुन ली थी। शाम को जब विनोबा स्कूल से लौटकर जब भोजन करने बैठा तो माँ उसके पास आकर बैठी और पूछा,
1: तूने कौन सा विषय चुना।
2: मैंने फ्रेंच विषय चुना।
1: ब्राह्मण का बेटा संस्कृत नहीं सीखेगा।
2: ब्राह्मण का बेटा है तो संस्कृत सीखेगा ही, परंतु संस्कृत स्कूल जाके सीखे ये जरूरी नहीं।

0: माँ के उन शब्दों का इतना गहरा असर पड़ा जिसका वर्णन विनोबा भी कर नहीं सकते। आगे उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, उसके अलावा 15-20 भाषाएं भी सीखी। लगभग 1915 की बात है, बड़ौदा में एक प्रवचनकर्ता आए थे। वे गीता का प्रवचन करते थे। विनोबा जी की माँ रोज रात उनका प्रवचन सुनने जाती थी। 2-4 दिनों बाद वो विनोबा से बोली,
1: विनिया, वो गीता पर बोलते हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझता, मुझे एक मराठी गीता की पुस्तक ला कर दे।
2: ये लो किताब गीता की जो मराठी में है।
1: अरे ये तो गद्य है, मुझे पद्य वाली ला दो।
0: गद्य की अपेक्षा पद्य शायद पढ़ने में आसान होता है। उस समय वामन पंडित की समश्लोकी गीता, यही पद्य अनुवाद उपलब्ध था। वो किताब विनोबा ने माँ को ला कर दी। कुछ दिनों बाद वो बोली,
1: विनिया ये कठिन है, समझ में नहीं आती।
2: तो क्या करे, इससे अधिक सरल अनुवाद मिला ही नहीं।
1: तू ही क्यों नहीं कर सकता मेरे लिए गीता का मराठी अनुवाद, तू ये कर सकता है।
0: उसका बेटा गीता का पद्य में अनुवाद कर सकेगा, ऐसा विश्वास उस माँ को कहां से आया ये भगवान ही जाने। शायद विनोबा को कविता लिख लिख कर अग्नि को समर्पित करते हुए देख लिया होगा। जो भी हो, परंतु उस विश्वास ने विनोबा में अटूट शक्ति भर दी। माँ की मृत्यु के कुछ साल बाद विनोबा को गीता का मराठी पद्यानुवाद करने की प्रेरणा हुई और जेल में उन्होंने वो अनुवाद कर डाला और उस अनुवाद को उन्होंने गीताई यानी गीता आई, गीता माता, मराठी में माँ को आई कहते हैं, ये नाम दिया। गीताई में आई माँ का सर्वोत्तम स्मारक रचा गया है। विनोबा कहते हैं,
2: जब मैं गीता का थोड़ा बहुत अर्थ समझने लगा तब मेरी माँ चल बसी।

0: उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे गीता माता की गोद में सौंप कर गई है। माँ गीते, मैं आज तक तेरे ही दूध से पला हूं, आगे भी मुझे तेरा ही सहारा है।
1: विनोबा के व्यक्तित्व में वैराग्य वृत्ति उनकी अपनी संपत्ति है। वैसे उनकी मां में वैराग्य और भक्ति भरी पड़ी थी। 30 पर भी ऐसा लगता है कि विनोबा पूर्व जन्म की कमाई करके लाए हैं। शंकराचार्य, ज्ञानदेव उनकी प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र में रहे हैं। बेशक ब्रह्मचर्य और वैराग्य के मूल को सिंचित करने वाली मां तो थी ही, परिणाम स्वरूप बचपन से ही इस दिशा के उनके विचार स्पष्ट और मजबूत रहे। महाराष्ट्रियों में एक रिवाज है कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय जब लड़का भाग जाता है तो मामा अपने भांजे को मनाता है कि भागो मत, मैं तुम्हें अपनी लड़की ब्याह दूंगा। इस रिवाज का विरोध करते हुए 12 साल की उम्र में ही विनोबा ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। पितराई भाई महादेव भी इस व्रत का साथी था। तब से ब्रह्मचर्य वाला कठोर जीवन विनोबा का शुरू हो गया था। माँ विनया का बिस्तर बिछाकर रखती तो सोते समय विनया उसे हटाकर कंबल बिछाकर सो जाता।
2: तुमने गद्दी क्यों हटा ली?
0: ब्रह्मचारी को नरम गद्दी पर नहीं सोना चाहिए, ऐसा नियम है।
2: विनया, ईश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। यदि मुझे पुरुष बनाया होता तो मैं तुझे दिखाती कि वैराग्य क्या चीज है।
0: माँ की वृत्तियां देखकर मुझे तनिक भी संदेह नहीं होता कि वह वैसा न कर पाती।
1: अपने बच्चों की शादी हो, लड़के के भी पुत्र पौत्रादि को देखकर देह छूटे, ऐसी वासना कई माता पिताओं की रहती थी। परंतु ये माँ तो कोई न्यारी ही थी। वो अपने पुत्रों को सिखाती थी,
2: विनया, गृहस्थाश्रम का पालन अगर सही तरीके से अच्छी तरह से किया गया तो एक पीढ़ी का उद्धार होता है। परंतु ब्रह्मचर्य का यदि उत्तम पालन किया जाए तो 42 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
1: विनोबा की माँ की उम्र 36 वर्ष की थी। तब से उनके माता पिता ने माँ की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। ये बात माँ के जाने के बाद पिता ने विनोबा को बताई। विनोबा कमाल के आलसी थे। वे कहते,
0: मैं पहले से ही बहुत आलसी हूँ। शादी न करने के पीछे ब्रह्मचर्य का विचार तो है ही, उसके साथ साथ गृहस्थी का संसार खड़ा करने में मुझे बड़ा आलस भी लगता है।
1: जब वे शाला में पढ़ते थे तब गर्मी के दिनों में माँ बड़ौदा की गर्मी सहन न कर पाने से कोंकण चली जाती थी। बच्चे सब पढ़ाई के लिए बड़ौदा में ही बने रहते थे। माँ जाते समय विनय से कह जाती थी,
2: देख बेटे, इस अलमारी में 5 रुपए रख जाती हूँ, आम के मौसम में आम खरीदना और खूब खाना।
1: छुट्टी पूरी होने पर माँ लौटती तो घर की सफाई करते समय उस अलमारी में देखती तो वे 5 रुपए वहीं के वहीं धरे हैं। माँ पूछती,
2: क्यों रे विनया, तूने आम खाए ही नहीं क्या?
0: अरे माँ, बाजार में जाए कौन, आम खरीदे कौन और घर पर लाकर खाए कौन?
2: विनया, मैं मंदिर जा रही हूँ, पिंजरे में खाना पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना।
1: माँ मंदिर से वापस आकर देखती कि विनया पढ़ने में ही तन्मय है तो पूछती,
2: क्यों बेटा, कुछ खाया तूने?
0: अरे माँ, अलमारी खोले कौन, थाली में निकाले कौन और खाए कौन?
1: शंकराचार्य का एक श्लोक है कि अनिवार्य कर्म ही करना और सो भी अनासक्ति के पथ्य के साथ। विनोबा ने बचपन से ही गुरु के इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया था। एक बार विनोबा के पिता बड़ौदा से दीपावली की छुट्टियों में घर पर आने वाले थे। माँ ने अपने बच्चों को पहले से ही कह रखा था कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाएंगे। जब पिताजी आए तो उनके हाथों में बच्चों ने लाल पीले रंग का चौकोना पैकेट देखा। विनोबा को लगा कि उसमें बर्फी होगी। इतने में पिताजी ने ही ऊपर का कागज निकाल दिया और कहा,
3: लो बेटा, तुम्हारे लिए है ये बाल रामायण, बाल महाभारत और बाल भागवत की मिठाइयाँ।
0: देखो माँ, बाबा हमारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं।
2: बेटा, इससे अच्छी मिठाइयां और क्या होगी।

0: उन मिठाइयों का चस्का विनोबा को बचपन से जो लगा है आज तक छूटा नहीं। पदयात्रा के अत्यंत व्यस्त जीवन क्रम में भी उनका पुस्तक पठन जारी ही रहा। इहलोक में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक लोक बना लिया है, जहां दुनिया भर के नामी अनामी संत महानुभावों का दरबार लगा रहता है। नरहरि भावे, विनोबा के बाबा का जन्म 1875 ईस्वी सन में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में अनेक विरल सद्गुणों का सुभग समुच्चय हुआ था। वैज्ञानिक तो वे थे ही, संगीतज्ञ भी थे। कला और विज्ञान के दो पंखों से उन्होंने जीवनाकाश में विहार किया। वैज्ञानिक होने के नाते सिर्फ अपने कमरे की प्रयोगशाला में उनके प्रत्यक्ष प्रयोग चलते थे। वैज्ञानिक ढंग से खाना पीना रहना सोचना और जीना, ये उनकी जीवन पद्धति थी। उनके जीवन में सादगी थी, संयम था, नियमितता थी, सातत्य था। वैज्ञानिक पिता बच्चों को समझाते थे,
1: अरे मुंह में कौर रखते हो तो वह मीठा लगता है, फिर उसको अंदर जल्दी धकेल देने में उतावली क्यों करते हो, पेट में वह थोड़े ही मीठा लगने वाला है। स्वाद का स्थान तो जीभ है, मुंह है, तो थोड़ी देर खाना वही रहने दो, चबा चबा कर उसका स्वाद बराबर लो, फिर उसे पेट में जाने दो।
0: सचमुच में पिता का सारा वैज्ञानिक काम चलता। माँ जाने के बाद 30 साल वे जिए, उसमें उन्होंने आहार के अनेक प्रयोग किए। करीब 20 साल वे केवल दूध पर ही रहे, बीच बीच में सोयाबीन लेते थे। जब माँ का देहांत हुआ तब एक बार बालकोबाजी की इच्छा हुई कि पिताजी पर माँ की मृत्यु का क्या असर है पूछ ले, तो उन्होंने पूछा,
2: बाबा माँ गई तो उसका आप पर क्या असर हुआ?
1: तुम्हारी माँ गई तो मेरी तबीयत जरा ठीक रहती है, मैं संयम और विज्ञान से बरतने वाला आदमी हूँ। फिर भी एक समय का भोजन मैंने तुम्हारी माँ के हाथ में रखा था, वह जो खिलाती थी खा लेता था, अच्छा बुरा नहीं देखता था। परंतु अब वह गई तो मुझे जो चाहिए सो खा लेता हूँ।
0: इस प्रत्युत्तर को याद करके विनोबा गदगद होकर कहते हैं, कितने वैराग्य का उत्तर है। करीब करीब तुकाराम की भाषा है, बाई मेली मुक्त झाली देवा मला सोडवली, यानी पत्नी मरी तो वो भी मुक्त हुई, मुझे भी मुक्त किया।
3: पिताजी योगी थे, गणितज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, वे 35 साल व्रतस्थ रहे तो सहज रहे ऐसा देखा, परंतु उसकी प्रेरणा उन्हें माँ से मिली। माँ के अस्पष्ट बोलने से ख्याल तो आ ही गया था, परंतु माँ के जाने के बाद बाबा ने खुद ये कहा।
0: विनोबा जी के पिताजी रसायन शास्त्री थे, वे रंग के विविध प्रयोग करते रहते, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को रंगते और फिर कौन सा रंग कच्चा है, कौन सा पक्का, कौन सा रंग धूप में टिकेगा, कौन पानी में टिकेगा, कौन रंग दोनों में, इस तरह से अलग अलग प्रयोग करते रहते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों की उन्होंने एक पुस्तक भी तैयार की थी। एक बार माँ ने कहा,
4: जैसे छोटे छोटे टुकड़े रोज रंगते हो, उसके बजाय मेरी एक हाथ साड़ी रंग देते तो पहनने के काम आती।
1: यदि प्रयोग सफल हुआ तो इसमें एक नहीं अनेक साड़ियां मिलेगी, परंतु जब तक प्रयोग सफल नहीं हुआ तब तक तो टुकड़े ही हाथ में रहेंगे।
0: छोटे छोटे तौलिए पर अ से ज्ञ तक अक्षर घर में ही झांप कर वो बच्चों को देते थे, जिससे उनमें किताबें लपेटकर बच्चे स्कूल में जाए और नजरों के सामने अक्षर रहे तो आसानी से लिखा जाए। बड़ौदा में कपड़े की पहली मील शुरू हुई तो उनको बहुत आनंद हुआ। उस दिन घर आकर वे सबको इतने आनंद से खबर देने लगे कि माँ कहने लगी,
4: आज तो आपको बहुत आनंद हुआ होगा, इतना आनंद तो विनु के जन्म की वार्ता सुनकर भी नहीं हुआ होगा।
1: भारत का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मशीनरी आनी चाहिए।
0: जब गांधी जी ने ग्रामोद्योग संघ शुरू किया और हाथ से कागज बनाने का उद्योग शुरू किया, ये सन 1934 की बात है, पिताजी ने विनोबा को एक पत्र लिखा था। 10-12 पन्नों का वो पत्र था, कागज के रंग में कुछ नीलापन था। पत्र में लिखा था,
1: इस पत्र की सब क्रियाएं मेरे हाथ से हुई है, कागज मैंने बनाया, जो स्याही इस्तेमाल की है वह मैंने बनाई, जिस कलम से पत्र लिखा वह कलम मैंने बनाई और पत्र भी मैंने खुद लिखा है, कागज में कुछ नीलापन रह गया है, वह निकाल सकते हैं, परंतु उसे निकालने के लिए द्रव्य बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इसलिए वैसा ही रहने दिया। नीलापन खराब तो नहीं?
3: मुझे आज भी बाबा का वो पत्र याद है, परिपूर्ण स्वावलंबन का द्योतक वह पत्र था, परंतु दुर्भाग्य से वो पत्र अब कहीं नहीं मिलता। मुझे वो संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने नाम आए कोई भी पत्र संभाल कर नहीं रखे, उसी में शायद वो भी गया।
0: विनोबा के पिता की समय निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी। बड़ौदा में उनके एक मित्र थे जिनके घर रोज शाम को ये शतरंज खेलने जाया करते थे। रोज आधा घंटा शतरंज खेलना, उससे कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। बीच में माँ कुछ दिन अपने मायके गई तो बच्चे उस मित्र के घर पर रहते थे। उस वक्त पिताजी अपने घर पर रहकर रोज शाम को नियमानुसार खेलने आते थे। 7 बजे उठ जाने का उनका नियम था। सामने घड़ी रखकर खेलते थे। कभी कभी 7 बजते और खेल अधूरा रह जाता। पिताजी उठ खड़े हो जाते तो मित्र कहते,
5: बैठिए ना, अभी तो न कोई जीता न कोई हारा, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा।
1: खेल तो कल भी खत्म हो सकता है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, कल यहीं से शुरू करेंगे।
0: उनको कोई मना नहीं कर सकता था, ये उनका नित्य का नियम था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का जिक्र करते हुए उनके मित्र बहुत बार विनोबा से कहते, देखो ये कुर्सी तुम्हारे पिता की है, हमेशा इसी कुर्सी पर वो बैठते थे। विनोबा भी शतरंज खेलने में प्रवीण थे, पिताजी से भी अच्छा वे खेल लेते थे। परंतु एक रात को स्वप्न में शतरंज का खेल आया तो दूसरे ही दिन से उन्होंने शतरंज खेलना छोड़ दिया। इस पर विनोबा ने कहा,
3: खेल तो मैं विनोद के लिए खेलता हूँ, परंतु वो अगर स्वप्न में आकर मुझ पर सवार होकर अपनी सत्ता जमाने लगे, ये कैसे हो सकता है।

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, अवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश आपली माणसं।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब किसी पशु के गले में कोई रस्सी बांध दी जाती है तो वह पशु उस खूंटे के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है। वह चाहकर भी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाता। वह सोचता है कि इस यही दायरा उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन इंसान की हालत तो उस पशु से भी ज़्यादा अजीब है। इंसान के गले में किसी ने बाहर से कोई रस्सी नहीं बांधी है, उसने खुद ही मोह, वासना और अज्ञान की एक अदृश्य रस्सी अपने गले में डाल रखी है और उसी के चक्रव्यूह में जिंदगी भर चक्कर काट रहा है। कबीर साहब आज हमें इसी अदृश्य रस्सी को काटने का हौसला दे रहे हैं। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जिस शरीर के अहंकार में आकर तुम इस रस्सी से बंधे हुए हो, वह शरीर एक दिन मिट्टी में ऐसे मिल जाएगा कि उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी दार्शनिक सूत्र। जिहि जेवड़ी जग बांधिया तू जिनी बंधे कबीर, जिहि जेवड़ी जग बांधिया तू जिनी बंधे कबीर, भाईसी आटा लून जू सोना सवा शरीर। जिहि जेवड़ी जग बांधिया

0: यह दोहा संसार के मोहपाश और काया के अभिमान पर की गई एक परम तार्किक चोट है। यहाँ जेवड़ी अर्थात रस्सी, वह सी आटा लून जू, आटे में नमक की तरह विलीन हो जाती हैं, और सोना सवा शरीर, सोना जैसा दमकता हुआ यह सुंदर शरीर का प्रयोग करके कबीर साहब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यानी काल के अनिवार्य नियम को समझा रहे हैं। श्रोताओं, कबीर साहब खुद को हम सबको संबोधित करते हुए जिही ज्योड़ी जग बांधिया, जिस ज्योड़ी यानी मोह माया और आसक्ति की अदृश्य रस्सी से यह पूरा संसार बंधा हुआ है और बंधकर हम उसमें छटपटा रहे हैं। तू जिन्हें बंधे कबीर, हे कबीर तू उस रस्सी से मत बंधना, तो इस मोह के जाल में खुद को दूर ही रखना। कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे शरीर की नश्वरता का अचूक सच सामने रखते हैं। भाई सी आटा लून जू, जैसे थोड़े से आटे में यदि मुट्ठी भर नमक मिला दिया जाए तो वह नमक आटे में पूरी तरह विलीन हो जाता है, उसे ढूंढने से भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही यह शरीर एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। सोना सवा शरीर, तुम्हारा यह जो सोना सवा यानी सोने जैसा दमकता हुआ कंचन जैसा सुंदर शरीर है, जिसके सौंदर्य और बल के अहंकार पर तुम डूबे हुए हो, वह एक दिन इसी मिट्टी के आटे में नमक की तरह मिलकर गायब हो जाएगा। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा असंगता और काल चक्र का एक अनूठा विश्लेषण है। वेदांत दर्शन में संसार को महामोह कहा गया है, जो जीवन को उसके आत्मस्वरूप से भटकाए रखता है। आटा लून जू का प्रतीक बहुत गहरा है। यह दर्शाता है कि जैसे नमक अपना अस्तित्व खोकर आटे का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही यह भौतिक तत्व पंच तत्वों में विलीन होकर अपनी पहचान खो देता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब इन सोने जैसी काया की नियति ही राख बन जाना है, तो फिर इस काया के सुखों के लिए अपनी चेतना को मोह की रस्सी में क्यों बांधना? बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस रस्सी को विवेक की तलवार से काट दे और जीते जी उस अमर तत्व से जुड़ जाए जो कभी नष्ट नहीं होता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी जीवड़ी यानी अपनी रस्सियों को पहचानिए। हमने खुद को किन किन मोह और इच्छाओं की रस्सियों में बांध रखा है? इस सुंदर शरीर को सजाने में, इसे अमर समझने की भूल में हम अपनी कितनी आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं? याद रखिए, समय का एक ही थपेड़ा इस सोने जैसी काया को मिट्टी कर देगा। आज कोशिश कीजिए इस अदृश्य रस्सी को की पकड़ को ढीला करने की। संसार में रहिए, शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन इसकी मोह के कैदी मत बनिए। अपने भीतर छिपे उस राम तत्व को खोजिए जो कभी काल के वश में नहीं आता। होश में आइए, सजग बनिए और अपनी चेतना को इस बंधन से मुक्त कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM। ऑलवेज
2: ओ मॅन ऑन द सर्फेस ऑफ धिस प्लॅनेट अलॉंग विथ मिलियन्स ऑफ क्रिएचर यू केम टू ब्रिंग अगेन अँड अगेन समवन युनिक फादर ऑफ द एंटायर युनिवर्स it is the theory that is crass, fanciful, ritualistic, and imagination including nonsense. In the whole universe, a frog was born and spread the breeds of frog. In the whole universe, a mosquito was born and spread the breed of mosquitoes all over the world. It would be wrong to claim that is theoretical. To investigate the evolutionary origin of hundreds of millions of such animal in a hypothetical way. On the entire surface of the earth, due to amalgamated union of natural element, countless creatures were born, some similar, some dissimilar. Birds and animals were born, and like that is man. On the planet, with varying DNAs in various regions, as per the region natural laws, your appearance and colors appear different. Varied as per region, black, white, short nose, flat nose, carnal size, tall or short, stout or lean. But after all, man, you are. Your behavioral pattern and utterance were expressed, and they're epitomized in varied dialects. Your primitive world tone, therefore born, thousands of dialects of them, some stabilized as standard language, out of thousands of dialects, tones of millions of masses went on indicating titles of elements, places. Of beast and bird, you uttered name of various animal, of places, of crop, those name as per that language customized. Then you became interactive medium for the generative nature, medium for acquaintance and for identification addresses around. In all these languages are not given to you by some invisible powers. You are the generator of the title, given and customized to different element in the nature. With your infinite power, you connected the whole world and transportation began. The content of life's affair and thoughts began to impart it. The visit of man to man by crossing the region for economic stability, the regions of man changed, the state changed, the countries also changed. In addition to this, took place interactions of thoughts, samskar, culture, mutually accompanying, some fictitious, some real, and some of practical experience. Oh man, your rationalism is infinite, your imaginative wisdom is infinite, your manners of experiencing material pleasure are also infinite. For the absolute pleasure of the material life, you invented innumerably for your material pleasure by crossing obstacle and soon dead.

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

मैंने पूछा नदी से, तुम्हारा मजहब? नदी कुछ भी नहीं बोली, बहती रही चुपचाप। कुछ पत्थर आए थे नदी की राह में, नदी अगल बगल से सरक कर आगे निकल गई। कुछ देर बाद पूछा मैंने, तुम्हारी भाषा नदी? नदी तब भी कुछ नहीं बोली, बस बहती ही रही। मैंने पहला प्रश्न सन 47 में किया था, दूसरा 71 के आसपास। पहली बार मेरे दो टुकड़े हुए थे, दूसरी बार मेरे टुकड़े के दो टुकड़े। किसी भी देश का विभाजन इसी तरह उसकी माटी से टीस बनकर उभरता रहता है। 200 साल पराधीन रहने के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी प्रसन्नता, कितने गौरव का विषय होगी, ये सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात कुछ अलग ही अनुभूतियों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़े में बांटकर आजादी की वो तस्वीर बनाई। जाहिर तौर पर भारत विभाजन की ये फांस भारतीयों के मन में धंस गई। जिस अधिनियम के तहत भारत आजाद हुआ उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक अधिनियम जिसके प्रावधानों के दूरगामी परिणाम हुए। इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। वो भारत जो सदियों से अपनी भौगोलिक और आत्मिक अखंडता का परिचायक था, इस अधिनियम ने उसकी जमीन पर बंटवारे की लकीर खींची। बरसों के संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी की भोर जाग रही थी। अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक आंदोलन हुए जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों के संकल्प से परिचित करा दिया था। स्वाधीनता संग्राम का उत्तरार्ध आते आते अनेक ऐसी घटनाएं घटी जो निर्णायक साबित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का झोंका जाना, आजाद हिंद फौज का पराक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बढ़ती लोकप्रियता, सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह और रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा किया गया नौसेना विद्रोह, ये वो तात्कालिक घटनाएं थीं जिन्होंने अंग्रेजों को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की याद दिला दी थी। इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और इसी लाचारी में उन्होंने भारत की आजादी तय की, लेकिन इसके साथ ही भारत विभाजन का षड्यंत्र भी रचा। 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया। लेकिन भारत अब आजाद था। इस अधिनियम ने भारत के एक नवीन युग की शुरुआत की। इसके बाद ही स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास आरंभ हुआ।

वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था। इसके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। 3 जून 1947 वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देश बनाए जाने की घोषणा की गई। माउंटबेटन के इस फैसले ने लाखों लोगों को अपने देश में ही शरणार्थी बना दिया। इस घोषणा के बाद करीब 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। दंगों में लाखों लोगों की मौत हुई और आजादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को देश दो भागों में बंट गया। इसकी पृष्ठभूमि में था वो डिकी बर्ड प्लान, जिसे मई 1947 में माउंटबेटन लेकर आए थे। इसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना गया। इस प्लान के तहत माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि देश के सभी प्रांतों को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, फिर उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया जाए कि वो संविधान सभा का हिस्सा बने या न बने। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर दो देश बनाया जाए, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस योजना पर अंतिम मुहर लगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ और इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। ये वो समय था जब अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी के इस देश में चारों ओर अशांति थी, सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, और उधर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक संघर्ष और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं थीं। इन परिस्थितियों में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान ऐतिहासिक थे, जिनके प्रभाव को आने वाले समय ने सहा। इस अधिनियम ने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने, लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं ये दायित्व संभाला। दोनों देशों को ये शक्ति दी गई कि वे अपने देश का संविधान बना सकें तथा किसी भी देश के संविधान को अपना सकें। संविधान सभाओं को ये शक्ति भी दी गई कि वो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त करने का प्रावधान दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटेन की शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। ऐसे अनेक प्रावधानों के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी कि बंटवारे में कौन सा क्षेत्र किस देश के पास रहेगा। अधिनियम में प्रावधान दिया गया कि बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाए तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। इस बंटवारे में भारत के हिस्से आया मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग प्रदेश, और पाकिस्तान के हिस्से में आया पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रांत और असम का मुस्लिम क्षेत्र। इसके साथ ही रियासतों को ये छूट दी गई कि या तो वो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या यथास्थिति में रहें। इस प्रावधान में छिपी थी गहरी उथल पुथल और छुपा था चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य।

विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित और दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव स्पष्ट था। साथ ही ये योजना भी नहीं बनाई गई थी कि विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। कुल मिलाकर जाते जाते भी अंग्रेज समस्याओं का एक वटवृक्ष बो गए, जिससे उबरना अत्यंत कठिन था। दोनों देशों की सीमा निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जिस सीमा आयोग का गठन किया गया, उसकी घोषणा में भी अनावश्यक देरी की गई। माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये सोच थी कि इससे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। जब भारत आजाद हुआ, तब देश में 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। रियासतों में बंटे इस भारत का एकीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृहमंत्री थे। सरदार पटेल ने रियासतों के विलीनीकरण के लिए दूरदर्शिता, सामंजस्य, जनता का दबाव तथा धमकी, इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया। भारत के हिस्से आए रजवाड़ों ने एक एक कर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, या कहें कि सरदार पटेल और वीपी मेनन ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था, तो उधर कश्मीर स्वतंत्र रहने की। लेकिन सरदार पटेल की संकल्प शक्ति और सूझबूझ से ये चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। बहुत कम समय में भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश का एकीकरण सरदार पटेल की अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अपने इस योगदान के लिए वो भारत के बिस्मार्क कहलाए। भारत से जाते हुए भी अंग्रेजों ने समस्या खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर की समस्या से भारत लगातार जूझता रहा, लेकिन ये वो भारत है जिसमें अपने सभी प्रांतों के लिए एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के ध्येय को पूरा करने का सामर्थ्य है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पारित अंतिम कानून था, एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिसमें भारत की आजादी का ऐलान था, लेकिन देश के विभाजन के साथ। अंग्रेजों की फूट डालने की एक ऐसी चाल जिसका खामियाजा पीढ़ियों ने भरा, लेकिन बावजूद इसके भारत की सनातनता और इसका अखंड स्वरूप सदैव स्थापित रहेगा, और निश्चित ही हमारी इस अखंडता के सम्मुख विश्व समुदाय नतमस्तक होता रहेगा। जय भारत, जय हिंद।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गुलजारी लाल नंदा का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब है सियालकोट। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से शरद गुरमीत, जलगांव महाराष्ट्र से आदर्श कुमार खले, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा और जबलपुर मध्य प्रदेश से दीप्ति सिंह। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको मेल द्वारा भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस विषय पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: बचपन में विनोबा खूब बीमार रहते थे। माँ हमेशा कहती थी कि हमारा विनया 6 महीने निकाले तो बहुत, कुछ न कुछ बीमारी होती ही रहती थी, इसीलिए डॉक्टरी दवा भी कुछ न कुछ चला करती थी। विनया को ये दवा पिलाते समय माँ रोज उससे ये श्लोक बुलवाती, औषध जानवी तोय वैद्यो नारायणो हरि। विनु उस प्रकार बोलता जाता। एक दिन इसका अर्थ उसके ध्यान में आया तो माँ से कहने लगा,
1: अरे माँ, इसमें तो भगवान को वैद्य और गंगाजल को औषध समझने के लिए कहा है।
2: तेरा वह अर्थ तो सही है, परंतु उसके लिए वैसी योग्यता चाहिए। तेरे लिए उसका अर्थ अलग है।
1: वो कौन सा है?
2: डॉक्टर को भगवान समझ और वह जो कुछ औषध दे उसे गंगाजल समझ।
1: परंतु माँ, ये 2 भूमिकाएं हैं, दोनों भूमिकाओं में, दोनों बातों में तथ्य है। माँ, तूने ये कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं, ये सौभाग्य का चिन्ह है या दुर्भाग्य का? तेरा सौभाग्य तो तेरे हाथ में नहीं, उस कांच के कारखाने के हाथ में है। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य?
2: अरे बेटा, कांच की चूड़ियां पहनने के पीछे भी एक दृष्टि है। कांच की चूड़ियां पहनी तो सावधानी से ख्याल रखते हुए काम करना होता है, फिर धड़ाम धम काम नहीं कर सकते। जैसे जनेयू पहनने से रोज स्नान किया है या नहीं इसका पता चलता है। जनेयू गंदा हो तो स्नान भी नाम का, वैसे ही यह बात है। कांच की चूड़ियां पहनने से काम में सावधानी और कुशलता आती है।

0: घुमक्कड़ तो विनोबा बचपन से ही था। दिन भर भटकता रहता, रात में घूम घाम कर घर आता तो अंधेरा हो जाता। घर के सभी लोग खा पीकर निश्चिंत हो जाते थे, सिर्फ माँ बेटे की राह देखती बैठती थी। वो वीना को खिलाकर तब खुद खाती, ये रोज का कार्यक्रम बन गया था। एक दिन विनोबा को आने में बहुत देर हो गई, देखा तो माँ बिना खाए बैठी है, उससे रहा नहीं गया।
1: माँ मुझे बहुत देर हो जाती है, तू पहले खा क्यों नहीं लेती?
2: तू उस बात को नहीं समझ पाएगा बेटा, जब तू माँ बनेगा तब इस बात को समझ सकेगा।

0: नमस्कार,
1: कभी न सुनी विनोबा लीला देखने को मिली। बहुत बार सवाल उठता कि क्या ये वही बाबा है, फिर याद आ जाता कि ये तो माँ बना हुआ बाबा है। सारी मातृलीला उसने बचपन से ही अपने माँ से सीखी है। विनोबा की माँ का मायका था कर्नाटक में तुंगभद्रा के किनारे। 4 साल की उम्र में पहली बार माँ विनया को नाना के घर ले गई। इतनी छोटी उम्र में भी माँ विनया को नदी पर स्नान के लिए ले जाती थी। कड़ी ठंड के दिन हो तो भी माँ बेटे को साथ ले जाने का आग्रह रखती थी। पाँव में जूते भी नहीं रहते थे। जब ठंडी असह्य हो जाती तब विनू को स्नान से मुक्ति मिल जाती थी, परंतु माँ का स्नान तो अटल था। परंतु बच्ची के मन का समाधान कराने के लिए वे कहती,
2: खूब ठंडी है, नहाने की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ा सा आचमन कर ले। कहावत है, गंगा स्नानम तुंगा पानम। जो फल गंगा स्नान से मिलता है वही फल तुंगा के पान से मिलता है।
1: बचपन से तपस्या, त्याग और भक्ति का भोजन बच्चों को मिला और उसमें से पोषण पाकर सन्यासी, भक्त और सेवक का एक अनोखा व्यक्तिमत्व जगत को मिला। जीवन के अनमोल पाठ पढ़ाने वाली माँ को याद कर वे कहते हैं,
3: जन्मदात्री मेरी माँ ने मुझे बचपन से त्याग और तपस्या सिखाई, बांट कर खाना सिखाया। वैसी ही मेरी दूसरी माता वेद माता ने मंत्र दिया। दोनों माताओं के मुझ पर अनंत उपकार।
1: विनोबा को बचपन से ही धर्म ग्रंथ पढ़ने का शौक था। कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते थे। एक दिन भक्त विजय पढ़ते पढ़ते उन्होंने माँ से कहा,
3: माँ, ऐसे संत तो केवल प्राचीन काल में ही हो सकते थे।
2: बेटा, संत तो आज भी है, बस हम उनको जानते नहीं है। यदि संत सज्जन ना होते तो फिर यह पृथ्वी टिकती किसके तप के आधार पर।
1: कितना गहरा विश्वास। खास पढ़ी लिखी न होने पर भी अपनी अंतर विद्या से माँ बच्ची को अमूल्य ज्ञान परोसा करती थी। यो भी माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, परंतु इस मामले में तो परस्पर आदान प्रदान चलता था। माँ को किसी विषय में समाधान न होता तो वो तुरंत विनया से पूछकर समाधान पा लेती थी। माँ को इतना भी पढ़ना नहीं आता था, कभी कभी विनया उसे पढ़ना भी सिखाता था। एक दिन सुबह विनोबा जी ऊपर के कमरे में वर्ड्सवर्थ की एक कविता ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। माँ ने सुना तो बोली,
2: विनया, ये क्या सुबह सुबह यस फस।
3: माँ, ये अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की अप्रतिम कविता है और मैं एक अच्छी किताब ही पढ़ रहा था।
1: जब विनोबा ने माँ को कविता का अर्थ समझाया और ये विश्वास दिलाया कि वे एक अच्छी किताब ही पढ़ रहे थे, तब वो बोली,
2: तू गलत किताब पढ़ेगा नहीं, यह मुझे पता है, और अंग्रेजी में भी अच्छे विचारों वाली किताबें होगी। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं, परंतु तड़के संस्कृत पढ़ना चाहिए।
1: संस्कृत सीखने की प्रेरणा विनोबा जी को माँ से मिली। विनोबा जी को हाई स्कूल में प्रवेश लेना था। घर पर चर्चा हुई कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा ली जाए। फ्रेंच ली जाए, ऐसा पिता का कहना था, और उनकी बात को विनोबा ने मान भी लिया। मगर माँ की रुचि उसमें नहीं थी, उसने बेटे और पिता की बातें सुन ली थी। शाम को जब विनोबा स्कूल से लौटकर जब भोजन करने बैठा तो माँ उसके पास आकर बैठी और पूछा,
2: तूने कौन सा विषय चुना।
3: मैंने फ्रेंच विषय चुना।
2: ब्राह्मण का बेटा संस्कृत नहीं सीखेगा।
3: ब्राह्मण का बेटा है तो संस्कृत सीखेगा ही, परंतु संस्कृत स्कूल जाके सीखे ये जरूरी नहीं।

0: भविष्य ने विनोबा को भी माँ बनाया, नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ नहीं, 30 साल की डबल ग्रेजुएट एक नौजवान लड़की की माँ। और तब कभी
1: श्रुति

0: माँ के उन शब्दों का इतना गहरा असर पड़ा जिसका वर्णन विनोबा भी कर नहीं सकते। आगे उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, उसके अलावा 15-20 भाषाएं भी सीखी। लगभग 1915 की बात है, बड़ौदा में एक प्रवचनकर्ता आए थे। वे गीता का प्रवचन करते थे। विनोबा जी की माँ रोज रात उनका प्रवचन सुनने जाती थी। 2-4 दिनों बाद वो विनोबा से बोली,
1: विनिया, वो गीता पर बोलते हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझता, मुझे एक मराठी गीता की पुस्तक ला कर दे।
2: ये लो किताब गीता की जो मराठी में है।
1: अरे ये तो गद्य है, मुझे पद्य वाली ला दो।
0: गद्य की अपेक्षा पद्य शायद पढ़ने में आसान होता है। उस समय वामन पंडित की समश्लोकी गीता, यही पद्य अनुवाद उपलब्ध था। वो किताब विनोबा ने माँ को ला कर दी। कुछ दिनों बाद वो बोली,
1: विनिया, ये कठिन है, समझ में नहीं आती।
2: तो क्या करे, इससे अधिक सरल अनुवाद मिला ही नहीं।
1: तू ही क्यों नहीं कर सकता मेरे लिए गीता का मराठी अनुवाद, तू ये कर सकता है।
0: उसका बेटा गीता का पद्य में अनुवाद कर सकेगा, ऐसा विश्वास उस माँ को कहाँ से आया ये भगवान ही जाने। शायद विनोबा को कविता लिख लिख कर अग्नि को समर्पित करते हुए देख लिया होगा। जो भी हो, परंतु उस विश्वास ने विनोबा में अटूट शक्ति भर दी। माँ की मृत्यु के कुछ साल बाद विनोबा को गीता का मराठी पद्यानुवाद करने की प्रेरणा हुई और जेल में उन्होंने वो अनुवाद कर डाला और उस अनुवाद को उन्होंने गीताई यानी गीता आई, गीता माता, मराठी में माँ को आई कहते हैं, ये नाम दिया। गीताई में आई माँ का सर्वोत्तम स्मारक रचा गया है। विनोबा कहते हैं,
2: जब मैं गीता का थोड़ा बहुत अर्थ समझने लगा तब मेरी माँ चल बसी।

0: उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे गीता माता की गोद में सौंप कर गई है। माँ गीते, मैं आज तक तेरे ही दूध से पला हूं, आगे भी मुझे तेरा ही सहारा है।
1: विनोबा के व्यक्तित्व में वैराग्य वृत्ति उनकी अपनी संपत्ति है। वैसे उनकी मां में वैराग्य और भक्ति भरी पड़ी थी। 30 पर भी ऐसा लगता है कि विनोबा पूर्व जन्म की कमाई करके लाए हैं। शंकराचार्य, ज्ञानदेव उनकी प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र में रहे हैं। बेशक ब्रह्मचर्य और वैराग्य के मूल को सिंचित करने वाली मां तो थी ही, परिणाम स्वरूप बचपन से ही इस दिशा के उनके विचार स्पष्ट और मजबूत रहे। महाराष्ट्रियों में एक रिवाज है कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय जब लड़का भाग जाता है तो मामा अपने भांजे को मनाता है कि भागो मत, मैं तुम्हें अपनी लड़की ब्याह दूंगा। इस रिवाज का विरोध करते हुए 12 साल की उम्र में ही विनोबा ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। पितराई भाई महादेव भी इस व्रत का साथी था। तब से ब्रह्मचर्य वाला कठोर जीवन विनोबा का शुरू हो गया था। माँ विनया का बिस्तर बिछाकर रखती तो सोते समय विनया उसे हटाकर कंबल बिछाकर सो जाता।
2: तुमने गद्दी क्यों हटा ली?
0: ब्रह्मचारी को नरम गद्दी पर नहीं सोना चाहिए, ऐसा नियम है।
2: विनया, ईश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। यदि मुझे पुरुष बनाया होता तो मैं तुझे दिखाती कि वैराग्य क्या चीज है।
0: माँ की वृत्तियां देखकर मुझे तनिक भी संदेह नहीं होता कि वह वैसा न कर पाती।
1: अपने बच्चों की शादी हो, लड़के के भी पुत्र पौत्रादि को देखकर देह छूटे, ऐसी वासना कई माता पिताओं की रहती थी। परंतु ये माँ तो कोई न्यारी ही थी। वो अपने पुत्रों को सिखाती थी,
2: विनया, गृहस्थाश्रम का पालन अगर सही तरीके से अच्छी तरह से किया गया तो एक पीढ़ी का उद्धार होता है, परंतु ब्रह्मचर्य का यदि उत्तम पालन किया जाए तो 42 पीढ़ियों का उद्धार होता है।
1: विनोबा की माँ की उम्र 36 वर्ष की थी। तब से उनके माता पिता ने माँ की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। ये बात माँ के जाने के बाद पिता ने विनोबा को बताई। विनोबा कमाल के आलसी थे। वे कहते,
0: मैं पहले से ही बहुत आलसी हूँ। शादी न करने के पीछे ब्रह्मचर्य का विचार तो है ही, उसके साथ साथ गृहस्थी का संसार खड़ा करने में मुझे बड़ा आलस भी लगता है।
1: जब वे शाला में पढ़ते थे तब गर्मी के दिनों में माँ बड़ौदा की गर्मी सहन न कर पाने से कोंकण चली जाती थी। बच्चे सब पढ़ाई के लिए बड़ौदा में ही बने रहते थे। माँ जाते समय विनय से कह जाती थी,
2: देख बेटे, इस अलमारी में 5 रुपए रख जाती हूँ, आम के मौसम में आम खरीदना और खूब खाना।
1: छुट्टी पूरी होने पर माँ लौटती तो घर की सफाई करते समय उस अलमारी में देखती तो वे 5 रुपए वहीं के वहीं धरे हैं। माँ पूछती,
2: क्यों रे विनया, तूने आम खाए ही नहीं क्या?
0: अरे माँ, बाजार में जाए कौन, आम खरीदे कौन और घर पर लाकर खाए कौन?
2: विनया, मैं मंदिर जा रही हूँ, पिंजड़े में खाना पड़ा है, भूख लगे तो खा लेना।
1: माँ मंदिर से वापस आकर देखती कि विनया पढ़ने में ही तन्मय है तो पूछती,
2: क्यों बेटा, कुछ खाया तूने?
0: अरे माँ, अलमारी खोले कौन, थाली में निकाले कौन और खाए कौन?
1: शंकराचार्य का एक श्लोक है कि अनिवार्य कर्म ही करना और सो भी अनासक्ति के पथ्य के साथ। विनोबा ने बचपन से ही गुरु के इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया था। एक बार विनोबा के पिता बड़ौदा से दीपावली की छुट्टियों में घर पर आने वाले थे। माँ ने अपने बच्चों को पहले से ही कह रखा था कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाएंगे। जब पिताजी आए तो उनके हाथों में बच्चों ने लाल पीले रंग का चौकोना पैकेट देखा। विनोबा को लगा कि उसमें बर्फी होगी। इतने में पिताजी ने ही ऊपर का कागज निकाल दिया और कहा,
3: लो बेटा, तुम्हारे लिए है ये बाल रामायण, बाल महाभारत और बाल भागवत की मिठाइयाँ।
0: देखो माँ, बाबा हमारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं।
2: बेटा, इससे अच्छी मिठाइयां और क्या होगी।

0: उन मिठाइयों का चस्का विनोबा को बचपन से जो लगा है आज तक छूटा नहीं। पदयात्रा के अत्यंत व्यस्त जीवन क्रम में भी उनका पुस्तक पठन जारी ही रहा। इहलोक में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक लोक बना लिया है, जहां दुनिया भर के नामी अनामी संत महानुभावों का दरबार लगा रहता है। नरहरि भावे। विनोबा के बाबा का जन्म 1875 ईस्वी सन में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में अनेक विरल सद्गुणों का सुभग समुच्चय हुआ था। वैज्ञानिक तो वे थे ही, संगीतज्ञ भी थे। कला और विज्ञान के दो पंखों से उन्होंने जीवनाकाश में विहार किया। वैज्ञानिक होने के नाते सिर्फ अपने कमरे की प्रयोगशाला में उनके प्रत्यक्ष प्रयोग चलते थे। वैज्ञानिक ढंग से खाना पीना रहना सोचना और जीना, ये उनकी जीवन पद्धति थी। उनके जीवन में सादगी थी, संयम था, नियमितता थी, सातत्य था। वैज्ञानिक पिता बच्चों को समझाते थे,
1: अरे मुंह में कौर रखते हो तो वह मीठा लगता है, फिर उसको अंदर जल्दी धकेल देने में उतावली क्यों करते हो, पेट में वह थोड़े ही मीठा लगने वाला है। स्वाद का स्थान तो जीभ है, मुंह है, तो थोड़ी देर खाना वही रहने दो, चबा चबा कर उसका स्वाद बराबर लो, फिर उसे पेट में जाने दो।
0: सचमुच में पिता का सारा वैज्ञानिक काम चलता। माँ जाने के बाद 30 साल वे जिए, उसमें उन्होंने आहार के अनेक प्रयोग किए। करीब 20 साल वे केवल दूध पर ही रहे, बीच बीच में सोयाबीन लेते थे। जब माँ का देहांत हुआ तब एक बार बालकोबाजी की इच्छा हुई कि पिताजी पर माँ की मृत्यु का क्या असर है पूछ ले, तो उन्होंने पूछा,
2: बाबा माँ गई तो उसका आप पर क्या असर हुआ?
1: तुम्हारी माँ गई तो मेरी तबीयत जरा ठीक रहती है, मैं संयम और विज्ञान से बरतने वाला आदमी हूँ। फिर भी एक समय का भोजन मैंने तुम्हारी माँ के हाथ में रखा था, वह जो खिलाती थी खा लेता था, अच्छा बुरा नहीं देखता था। परंतु अब वह गई तो मुझे जो चाहिए सो खा लेता हूं।
0: इस प्रत्युत्तर को याद करके विनोबा गदगद होकर कहते हैं, कितने वैराग्य का उत्तर है। करीब करीब तुकाराम की भाषा है, बाई मेली मुक्त झाली देवा मला सोडवली, यानी पत्नी मरी तो वो भी मुक्त हुई, मुझे भी मुक्त किया।
3: पिताजी योगी थे, गणितज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, वे 35 साल व्रतस्थ रहे तो सहज रहे ऐसा देखा, परंतु उसकी प्रेरणा उन्हें माँ से मिली। माँ के अस्पष्ट बोलने से ख्याल तो आ ही गया था, परंतु माँ के जाने के बाद बाबा ने खुद ये कहा।
0: विनोबा जी के पिताजी रसायन शास्त्री थे, वे रंग के विविध प्रयोग करते रहते, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को रंगते और फिर कौन सा रंग कच्चा है, कौन सा पक्का, कौन सा रंग धूप में टिकेगा, कौन पानी में टिकेगा, कौन रंग दोनों में, इस तरह से अलग अलग प्रयोग करते रहते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों की उन्होंने एक पुस्तक भी तैयार की थी। एक बार माँ ने कहा,
4: जैसे छोटे छोटे टुकड़े रोज रंगते हो, उसके बजाय मेरी एक हाथ साड़ी रंग देते तो पहनने के काम आती।
1: यदि प्रयोग सफल हुआ तो इसमें एक नहीं अनेक साड़ियां मिलेगी, परंतु जब तक प्रयोग सफल नहीं हुआ तब तक तो टुकड़े ही हाथ में रहेंगे।
0: छोटे छोटे तौलिए पर अ से ज्ञ तक अक्षर घर में ही छाप कर वो बच्चों को देते थे, जिससे उनमें किताबें लपेट कर बच्चे स्कूल में जाए और नजरों के सामने अक्षर रहे तो आसानी से लिखा जाए। बड़ौदा में कपड़े की पहली मील शुरू हुई तो उनको बहुत आनंद हुआ। उस दिन घर आकर वे सबको इतने आनंद से खबर देने लगे कि माँ कहने लगी,
4: आज तो आपको बहुत आनंद हुआ होगा, इतना आनंद तो विनू के जन्म की वार्ता सुनकर भी नहीं हुआ होगा।
1: भारत का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मशीनरी आनी चाहिए।
0: जब गांधी जी ने ग्रामोद्योग संघ शुरू किया और हाथ से कागज बनाने का उद्योग शुरू किया, ये सन 1934 की बात है, पिताजी ने विनोबा को एक पत्र लिखा था। 10-12 पन्नों का वो पत्र था, कागज के रंग में कुछ नीलापन था। पत्र में लिखा था,
1: इस पत्र की सब क्रियाएं मेरे हाथ से हुई है, कागज मैंने बनाया, जो स्याही इस्तेमाल की है वह मैंने बनाई, जिस कलम से पत्र लिखा वह कलम मैंने बनाई, और पत्र भी मैंने खुद लिखा है, कागज में कुछ नीलापन रह गया है, वह निकाल सकते हैं, परंतु उसे निकालने के लिए द्रव्य बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इसलिए वैसा ही रहने दिया। नीलापन खराब तो नहीं?
3: मुझे आज भी बाबा का वो पत्र याद है, परिपूर्ण स्वावलंबन का द्योतक वह पत्र था, परंतु दुर्भाग्य से वो पत्र अब कहीं नहीं मिलता। मुझे वो संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने नाम आए कोई भी पत्र संभाल कर नहीं रखे, उसी में शायद वो भी गया।
0: विनोबा के पिता की समय निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी। बड़ौदा में उनके एक मित्र थे जिनके घर रोज शाम को ये शतरंज खेलने जाया करते थे। रोज आधा घंटा शतरंज खेलना, उससे कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। बीच में माँ कुछ दिन अपने मायके गई तो बच्चे उस मित्र के घर पर रहते थे। उस वक्त पिताजी अपने घर पर रहकर रोज शाम को नियमानुसार खेलने आते थे। 7 बजे उठ जाने का उनका नियम था, सामने घड़ी रखकर खेलते थे। कभी कभी 7 बजते और खेल अधूरा रह जाता। पिताजी उठ खड़े हो जाते तो मित्र कहते,
5: बैठिए ना, अभी तो न कोई जीता न कोई हारा, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा।
1: खेल तो कल भी खत्म हो सकता है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, कल यहीं से शुरू करेंगे।
0: उनको कोई मना नहीं कर सकता था, ये उनका नित्य का नियम था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का जिक्र करते हुए उनके मित्र बहुत बार विनोबा से कहते, देखो ये कुर्सी तुम्हारे पिता की है, हमेशा इसी कुर्सी पर वो बैठते थे। विनोबा भी शतरंज खेलने में प्रवीण थे, पिताजी से भी अच्छा वे खेल लेते थे। परंतु एक रात को स्वप्न में शतरंज का खेल आया तो दूसरे ही दिन से उन्होंने शतरंज खेलना छोड़ दिया। इस पर विनोबा ने कहा,
3: खेल तो मैं विनोद के लिए खेलता हूँ, परंतु वो अगर स्वप्न में आकर मुझ पर सवार होकर अपनी सत्ता जमाने लगे, ये कैसे हो सकता है।